0: के गर्नु आज
1: दुई समाज लगाएर ओरा
2: रोम रोम तेरो नाम पुकारे
0: तो भाइ तु चढाउने वाला
3: चुरिस्ता सुन्ने का गाना हो
1: कौन सा स्टेप लगाएगा भाई
0: गाने का टेम्पो क्या है
1: अरे यार तुमको स्केल नहीं पता टेम्पो नहीं पता तुम क्या गाएगा भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता चल जा

0: क्या कहते हो?
1: झूठ, लाजवाब, शानदार,
2: लेकिन नहीं
3: क्यों?
1: क्योंकि ये गाना आज के जनरेशन का नहीं। मैं अरे जाओ
2: लो तो फिर यही गा लो।
4: दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो ना खासिया, ये बेटा अच्छी दुनिया।
3: ये चलेगा आपके लिए ना सर?
2: बिल्कुल चलेगा।
5: This is a song about a sleepy monster.

पार्थिवास एफएम समय सूचक। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले साँझ 5 बज्यो।